0: नाक कान घाटी आँखा को रोग उपचार
1: छाला का रोग सेतो दुबी चाया पोतो डंडी फोर दाद एलर्जी खटिरा निको नभएका घाउहर को सफल उपचार
0: थप जानकारी को लागि सम्पर्क सोलुसन आयुर्वेदा पाइल्स फिस्टुला नसा तथा हार्जोमी उपचार केन्द्र नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार थादिंग देशी होटल जनजीविका अगाडि
1: फोन नम्बर 010-521-248 मोबाइल नम्बर 98-141-1494-84
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

यसै गरी हामी शिवम सिमेन्टले पनि क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै फेरि ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज।

0: बुक हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: पानी तानी मोटर कालो पाइप मार्बल ग्रेनाइट टाइल पाइन को साथ ही पाइप फिटिंग में 50 वर्ष ग्यारेटी बाथरूम फिटिंग में 10 वर्ष ग्यारेटी और दक्ष पलम्बर तथा पेन्टर द्वारा पाइप फिटिंग और पेन्टिंग संबंधी संपूर्ण काम कर सुन्न तो बहनी त्यहाँ अर्डर अनुसार डीडब्ल्यूसी प्लास्टिक को हैंड पाइप पाइन
1: अधिकारी सप्लायर्स नीलकण्ठ नगरपालिका तीन पुछार बजार धादिङ किबो बोर्डिङ नजिक प्रोपाइटर त्रिलोचन अधिकारी र माधव अधिकारी सम्पर्क फोन नम्बर 010-521-4038 मोबाइल नम्बर 98-40-39-46-56
2: चप्पल किन अस्ति भर्खर पैसा दिएको होइन त्यो त फाटिसक्यो नि बजारमा अहिले कस्तो डुप्लिकेट जुत्ता चप्पल आइरहेछ हजुरलाई के थाहा
3: होइन तिमीहरू अघिदेखि किन झगडा गर्दैछौ
2: किन हुनु नि अस्ति भर्खर किनेको चप्पल आज फाट्यो भनेर पैसा माग्दैछ
3: ल भाइ हल्ला नगर छोरी तिमीलाई म पैसा दिन्छु तर जुत्ता चप्पल किन्न चाहिँ कृष्ण सप्लायर्स पुछार बजारमा जाऊ है
2: किन नि बाबा
3: किनकि त्यहाँ बच्चादेखि बुढासम्मलाई हुने लेडिज तथा जेन्ट्स आइटमका आकर्षक जुत्ता चप्पल सुपथ मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल बिक्री गरिन्छ नि
4: कृष्ण सप्लायर्स धादिङ डिस्ट्रिक्ट पुछार बजार प्रोपाइटर कृष्ण तिमल सिन्हा
5: सम्पर्क मोबाइल 97-41-031-4029
6: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

ए कुमार जी हजुर का मुखार बिंदु बाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाए प्रभु तेज पछि का कुरा के भए संहार करता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो सती देवीले कसका गर्भमा बास लिए श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु आज्ञा हुन्छ।